管，把一切都成管，遇见他们的都喊会白团，遇见他们呀都喊管，都是的，阿妈家一个那么些喊都听好的呀，一个那么些都喊管，他后面那还是真，哎呀的吧，给我们那还管，阿妈家。他红叶给我这一罐那么一口黑汤喊过去，哎，出海也厉害这个。口黑汤谁厉害嘛个？买猪肉喊过去一个，他搞这一堆。好，那买猪肉喊过去，我家边还白肉节，啊，西边白肉节，啊，说这那里猪肉喊不白。为了嘛，走路还不节气，啊，嘛现在那地那土呀，啊，你呀不白。为了节气个。ये मसालों वाली माही आया नहीं लेने हो जी नौकरों से आपको इने उन्हें माहियां जैसे पिया ना कौनी बाई हाथ से ये मसे मसालों आने